मिनल रही, पौधे तक पहुंच पैदा करन लगी, उच्चा चढ़ना होएगा। ख्याल करो राह होर चीज है, पबड़ियां होर चीज ने, हां ये गल वखरी है। कई राह प्लेन होंगे, उन्हां विच पौड़ियां नहीं होंदियां। पौड़ियां हमेशा उन्हां राहां विच आउंदियां ने जदों किसी की रहायश उत्ते होवे। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समझने लई उनकी शब्दावली एक एक करके समझना बहुत जरूरी बन जाता है। नॉर्मल रस्ता भी होंगे, प्लेन रस्ता भी होंगे। घर में जाता है जिथे कोई ग्राउंड फ्लोर से रहा हो पौड़ियों की लोड़ कोई नहीं, रहा है पौड़ियां कोई नहीं। पर पति के इस राह दियां पौड़ियां ने क्यों, क्योंकि वह ग्राउंड फ्लोर से नहीं रहता,

इस लई उंदा राह चलेन नहीं। उस पति परमेश्वर दा मिलन दा राह प्लेन नहीं, उंदे विच पौड़ियां नहीं। लो एथे फिर रुकना चाहिए। पौड़ी किसनू कहिंदे ने? बंतर असी रोजाना देखने, सिर्फ अज उन्हूं डीपली विचारन दी लोड़ है। पौड़ी दे वख वख स्टेप हुंदे ने। धरती दी निवान तो शुरू हुंदी है, छत दी उचान तक उन्हूं दी पहुंच हुंदी है। पर एक ख्याल करो,

फिर उन्होंने अंत में मिलाया होंगा। यह अंत ना जाने कोई ते जे इस जीवा की गिनती में पैने तो अंत बनता है। एक तो लख हो जाए, लख तो भी लख हो जाए, भी लख जीवा जीडिया ने एक लख लख बार लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ता फिर गिन के देख लो बकायदा गिनती असंखा तक भी नहीं बन रू तो असंख कहते ने संखा तक भी नहीं नील तक भी नहीं खरब ती खत्म हो जाती। गुरु कहते जेड़ा मनुख यह समझता है पहला तो एक अर्ज कर जो मनुख रब नाल गिनती पैंदा ना उत्थे दूर हो जाता है। अज माला नाल गिन गिन के नाम जपन वाले ने ना गुरु नूं एवें नहीं आखना पिया

रब कोई खिडौना जरा थोड़ी जी कीमत न खरीदया जा सकता है। खिडौने खरीदे जा सकते हैं, उन्हें असल रूप कोई अमीर ही खरीद सकता है। मैं कहती थी 10 रुपए 20 रुपए की खिडौने वाली कार तो खरीदी जा सकती है। असल नकली जगह तो खरीदे जा सकते हैं। असल इसलिए ख्याल करें माला ना गिन गिन के मैं रब की भगती करा जे तो गिनतियों में पावगा फिर गिनिया जा सकता है। जे असी इस लाइन के इतने अर्थ इस रूप में करने फिर गिनती आ जाए गिनती तय कर सकते हो एक दूजी बहु लख हो लख हो लख बीस लख लख गेड़ा अखी करीब सारी गिनती कर लो 2 खरब के करीब बन जाए जो 20 लख जिंदा लख लख वार नाम जपे 2 खरब के करीब बन जाए रब गिनती पै गया रब का अंत गिनती पै गया उन्होंने बेअंत ना आख्या तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण ना साकों वाली गल ना बनी वर्ण तो हो गया जे एनी अजीबा लग जा ते एनी अजीबा नाल एनी बार आख लवा तां वरण गया उत्थे आख दिंदे वरण ना साको इक ख्याल करियो जेड़ी कई संगत ची जांदी है ना अठकथनी अलंकार जिथे वरत्या जाता है मन के जज्बे बल्कि यह चीज साबित करता है भी आ कम नहीं हो सकता करा कि जे हो जाए हमेशा उनका भाव ही नहीं कभी मेरे को हमारा उनका विचुर नहीं हो सकता असंभव है। गुरु कहते ने मैं जबान नाल जे जीवा नाल तेरी सिमरन करन लगा ते प्रभु ए असंभव है एक नहीं जे लखा भी हो जान ते नहीं जप सकांगा ऐस पासे इसका समूचा भावता मिलेगा जे आखां भी इन्नी अजीब लग जान ते उन दे नाल मैं नहीं बस जप लां ते बस ए मेरी पगपौड़ियां नहीं चलिए हुई चीज़

0: लख बीस हमारी जेवा एक प्रभ
1: कितने गल मेरे लिए संभव है। मैं जबान नाल तेनू नहीं रिझा सकता क्योंकि मेरे को जबान एक एनिया जबाना हो जाए तद भी मेरे लिए मुश्किल है। जी गल है ही असंभव जड़िया लगनिया ही नहीं। मैं अपनी जबान से नाल जपया होया तेरा नाम ते इस नाल कीती हुई गिनती जड़ी है इन्दे ते तेरे मिलाप नू निर्भर कर ही नहीं सकता। तेरी वैल्यू इन्दे नाल पाई नहीं जा सकती। हाँ ये पत पवड़ियां दा पहला स्टेप जरूर है। बस ऐसे रुकना चाहना ये नहीं कि छड़ना है भी जबानों नाम जपने ही नहीं। ये पत पवड़ियां दा पहला स्टेप है नाम जपना ये नहीं कि भाई रुके नहीं जबानों इनकी लोड़ी कोई नहीं। ये असफल है ये निर्फल है ये फजूल है जरूरत को ऐसी गल बिल्कुल नहीं। पौड़ियां का पहला स्टेप है पहले स्टेप पे नाम जबान से आ पर एक ख्याल करी कि पहले स्टेप पे खलो ना जाए मतमाल की गिनती विच पै जाए पाठां की गिनती विच पै जाए इन्ने पाठ कर लेने सुखमणी साहब दे इन्ने पाठ कर लेने जपजी साहब दे एनिया माला फिर पिछले कंफ्यूज करने बड़े ही साधन पैदा हो गए। वो लोग भी ने जो सू गिनती मिनतियां पाते ने जे तू एने जपजी साहब के पाठ रोज कर लें श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का फल मिलेगा। जे तू एने सुखमणी साहब के पाठ रोज कर लें एक महीने बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का फल मिलेगा। जे तू एनिया माला पहली पौड़ी दियां फेर लें पहली पौड़ी दियां फेर लें महीने बाद उत्थे ए भी जे पुछया विचार होई ते कहन लगे जी अखर पूरे हो जांदे ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अखर पूरे हो जांदे ते पढ़ियो जदों अखर पूरे करन दा मसला आउंदा है ते फिर तुसीं तुहाडी पहली पौड़ी वक्खरी हो जांदी है। कहिड़ी पहली पौड़ी दे अखर पूरे कर रहे हो हैरान होना जो वेखना सदियों तो वरिया को पाठ करने वाले अजे तक वो ये नहीं जानते पहली पौड़ी असी एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद जा नानक होशी भी सच तक जे लोग कहें जे नानक होशी भी सच तक मनते हैं वो पहली पौड़ी आख देंगे इतने पहली पौड़ी है नहीं। ये पहला श्लोक है आस्था युवा सत्र नानक होशी भी सच तो पहली पौड़ी शुरू होंगी है नानक लिखिया नाल ते जाके पहली पौड़ी समाप्त होंदी है। सोचा सोच ना होवे वाली पौड़ी जिहड़ी है ये जपजी साहब की पहली पौड़ी है। दसो किसी नूं कोई पाठ कराने वाला पहली पौड़ी का पाठ कराने वाला सोचा सोच ना होवे पौड़ी का पाठ कराउंदा होवे बिल्कुल नहीं। एक ओंकार तो नानक उसकी भी सच तक आखणगे पहली पौड़ी है पाठ करो जेड़े भी कराते कभी उन्होंने को पुछो जी कि पहली पौड़ी का पाठ करिए एक है। हालांकि पहली पौड़ी जी है वह सोचा सोच ना हो गई तो शुरू होंगी है नानक लिखिया नाल से समाप्त होंगी उका पिया होया कदे किसी ने पहली पौड़ी इसका पाठ नहीं कराया। पर अखर की गिनती वाले पास ज्यादा खोज टाइम लगा दिता है भी इन्ना कुछ कीतिया इन्ने अखर पूरे हो जाते हैं गिन गिन के रब नाल प्रभु नाल गुरु नाल हिसाब गुरु ख्याल करते हैं केंद्र एक गल मैं कहना चाहना जदों तू रब नाल गिनती विच पै जाएगा पिछले दिहाड़े विच एक तो कहे सी हे प्रभु जे मैं तेरे नाल गिनती करा तो उसके बदले तू भी मेरे नाल गिनती करन लग पे गल

0: क्रैक उन्हें अंदर टिकेगा तो अंदर पीस बनेगा।
1: तीर्थ नाम जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है।
0: अंदर तीर्थ ता ही बनेगा ना जे नाम तीर्थ अंदर फुटेगा। अजय तो जबान ते है अजय तो कन्ना विच है अजय ते अंदर पहुंच गया ही नहीं। अजय पहला स्टेप चले तू ते पहले स्टेप ते ही खड़ो गए ते चाहना मैं रब दा प्रभु दा मिलाप दी गल करा। ये गल्लां गुरु साहब कहंदे ने बड़ी मुश्किल ये तो आहिस्ता आहिस्ता पौड़ियां चढ़ना है। पहले जबानू वाहेगुरु आखना है फिर उस वाहेगुरु नू हिरदे विच ले आउणा है ते हिरदे विच ले आउण तो बाद उसने मन बच कर्म विच जाना है। मन बच कर्म विच भी प्रवेश करना। जो मन बच कर्म विच प्रवेश करेगा फिर तेरा जीवन जेड़ा कंप्लीट जीवन भक्ति हो जाएगा। उदों फिर वो अवस्था बनेगी जिन्हों असी आखने गुरमुख रोम रोम हर त्यावे। उदों जीवन का हर पहलू भक्ति हो जाएगा। गुरु साहब की बाणी की एक वरतों कही थी कि सारा जीवन भक्ति किने बनता है।

ये सब दुख विसारण हारा। हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे जोज बढ़ाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन बरना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव हैं जो सेव हैं तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जन हर त्याया जी, दन तूटी जम की फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, दिन का पाओ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत तेरी भगत।

अनक करह हर पूजा जी, दब दब है जप है बेअंता। तेरे अनेक बड़ है बहुत स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परम पर करता जी, तुद जीवड़ वरना कोई।

सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने हो। सरी असबान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तो हे बखाने दोहरा।

जानंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजी।

नाम जिन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर दे रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब बजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दियां ए वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सभा गए शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया

पाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर दे जानी। सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पे।

0: पिता मालिया माता जी मंदिर रखा हुआ एक मेरे तौर पर अपने पान से ढेर सदा सही नजर आई यदि मैंने कहा था जब गुरुद्वारे और हमारे जिले के पंथ में जुड़ रहे हुए रखने का सेवा संभावना था आम प्यारे खालसा जी मास्टर जी आप जी सरकार और चरणा के प्यारे सचिव बात करिए आप जी ने अग्निशन पर करना चलो आपने बेनती किया पानी हाँ करिए मत करिए कृपा करनी मन दिया संभावना पूरी करनी सरकार जी मत करना सारियां प्रवान करनिया जी आने वाला समाज के रूपों में सुरक्षा दी करना जो राजा सभी प्रवान करना करके अपनी करना उच्च रखना कि सही प्यारे मेरे नाम जी ने मेरा पवित्र नाम चेता है नानक नाम कभी कलान
1: ग्रंथ
0: गुरु ग्रंथ जी
1: ग्रंथी दे शब्द मिले आखी रहे न कोई बचे शरण
0: वाहे गुरु नाम जहाज है
1: तेरे सिख का
0: जो

जन निर्मल थी वे सतनाम श्री वाहिगुरु जी सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाथे दुख बिन से

प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ते आया। प्रभु जीओ तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग रतार। सतगुर नाम निदान दृढ़ाया, चिंत

ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पिया वह हिरास कथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाज हो हर गुरु ते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होएंगो फेरा। अंतर जामी पुरख बिधाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे

0: अगर एक भी व्यक्ति इस एल्बम में सुन के उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरु अपने रचना तो जप लवे तो असि समझांगे कि साडा ये एल्बम बनाने का मकसद पूरा होया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: नानक नाम चढ़दी गला तेरे भाणे सरबत दा।

गुरु सत्संग जीओ, गुरमत गुरबाणी विचार पंजी के समक्ष देख करा सके प्रबंध गाले को जाते दिसते दूर, गाले को देखे हाजरा हजू, श्री प्रभु गाले है तेनों को जिस तरह कह रहे हैं तो दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर। पर किस तरह भी कोई गा रहे है और कह रहे है और बड़े दावे न गावे को लेख है हाजर हाजर, उसे हाजर नाजर है, उसे कौन है, उसे नेड़े तो भी नेड़े है। धर्म के अनंत पहलू ने और अनंत पहलुआ की विचार भगत जना ने की थी, किसी ने किसे अंग नो लिया, किसी ने किसे अंग नो लिया। जैसे शरीर इनू पिंड कहते हैं और वड्डे शरीर नो ब्रह्मंड कहते हैं, ब्रह्मंड भी महान है ते पिंड भी महान है। यही कारण है ब्रह्मंड के वक् वक् हिस्सों के ज्ञानी मिलते हैं, इस पिंड के वक् वक् अंगों के ज्ञानी मिलते हैं। कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है दंदा बारे जाना, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, विशेषक वक् वक् है। एक एक नस एक एक अंग महान है और कोई डेंटिस्ट दावे नाल ये नहीं कह सकता दंदा बारे जो मैं जानता कि आखिरी जानकारी है इस तौर पर कोई

करनी, रिश्वत लेनी, दूजे नूं दबाउणा, नीवा समझना, या जात पात का विचकरा, या मेरी गरीबी का विचकरा, एक खोटी बात। जिस नौ वाहिगुरु जी ने जो कुछ भी दिता है शांत हो जाए, दुखदा ना मन विच लियाओ। जिथे भी सिख नूं सतगुरु ने रखिया है, सिख उथे ही चलता है। ऐसा ही जीवन जीवना सिखो। वाहिगुरु जी ने जो भी इसनों दिता है शांत रहो। कदे मन च ना लिया उस ज्यादा कुछ दिता है, घट कुछ दिता है, ऐं नहीं कि ऐं है। जो कुछ होना है ये वाहिगुरु जी अपनी रजा विच ही होना है। इसलिए तेरा पाना मीठा लागे। इस सब संदेश गुरु अर्जन साहब महाराज दिता है। तपती तवि ते बह के भी, तत्ता रेता सीत ते गुआ के भी, ठंडे पानी का स्नान करके भी, देही की की हालत होगी होगी ये देखी नहीं जा सकती। सत्संग एक कहना बहुत औखा है, इसको बर्दाश्त करना बहुत ही औखा है। जो गुरु अर्जन साहब महाराज जी की जी बड़े हालत होगी किसी भी ना हो गए, वाहिगुरु ऐसी कृपा कर। पता नहीं उन्होंने की सिद्ध है, कैसा भरोसा है, कैसा प्यार है, फिर भी वो प्यार नाल सबनों प्रेम ही बन रहे हैं। ऐसा गुरु का स्वरूप है, ऐसा अकाल पुरख का स्वरूप है। मन तन अंतर हर हर मन, मन विच भी तन विच भी, रोम रोम विच करवाई गुरु का नाम आ जाए, ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। सब तो पहला मन कंट्रोल होंगे, बुद्धि प्रज्वलित होंगी, चेती एकाग्रताई होंगी, अंतकरण साफ होंगे, फिर नाम का रंग चढ़ता है, फिर बुद्धि के विचार प्रगट होंगे ने। कई बार सत बाणी सामने आ जाती है, जिदा किसी सेवा बन जाती है। ऐसा भी सतगुरु कर देंगे ने कि सहजे सहजे इन आत्मा का ज्ञान होंगे। आत्मा का ज्ञान होने पिछे फिर आत्मा राही इन परमात्मा का ज्ञान होंगे। जिसन परमात्मा का ज्ञान हो जाए वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी हो जाए महेश्वर नानक आप ब्रह्म ज्ञानी। परमेश्वर ही आप ब्रह्म ज्ञानी है, पर सिख भी का नाम जप जप के उससे हो जाते हैं। हर हर जन दो एक है, फिर विचार सुनाए। इस सब तो मन की उपर की खेज है, जिथे जाके मन पूर्ण तौर से गिर जाता इस सब का भला मानता। सब जात बरादरी एक, सारी मनुख जाति एक। असी उस गुरु के बच्चे हाँ जिसने सारी मनुख जाति उपदेश दिता है। असि उस गुरु के बच्चे हाँ जो सारी मनुख जाति सारी 84 लाख जोन का भला मंगता है। असि उसके बच्चे हाँ जिसकी बाणी सब के लिए है। असि उसके बच्चे हाँ जिसका लंगर सब के लिए है, जिसकी दया मेर सब के लिए है। इसलिए सानू यतन करना चाहिए गुरां का उपदेश सब तक पहुंचे। ये साडा यतन चाहिए। असि गुरु नानक महाराज के सिखा, ऐसा ना हो प्रसाद अभी आप ही बना लीए, आप ही खा लीए, ऐसा ना हो। मेरा अर्थ है बाणी का प्रसाद। इस बाणी का प्रसाद दूर दूर तक जाए ताकि असी सिखी धारण कर सकिए, एक गुरु नानक के बच्चे बन सकिए। मन तन अंतर हर हर मन, जो अंदर और बाहर स्वास स्वास रोम रोम विच वाहिगुरु जी आवस्ते रोम जीवन होंगे। रोम वाहिगुरु का स्वरूप होंगे। रोम शरीर से वाहिगुरु जी ने अपने स्वरूप लाए ने, किधरे वध किधरे घट। रंग भी इनू आप ही दिता है, इसकी बहुत सूक्ष्म क्रिया है। इन्ने रोम बार शरीर के बाहरले पासे नहीं, जिन्ने साडे शरीर के अंदरले पासे, प्राण नूं साफ करन वास्ते अंदरले पासे बहुत रोम ने, उन्हां दी अलग क्रिया है। इसलिए रोमां दी संभाल वाहिगुरु मंत्र नाल हुंदी है। इसलिए सिक्खी इत्थों ही पैदा हुंदी है। ख्याल रखियो जे फिर भी ये रोम साडा साफ नहीं छड्डदे। असि इन्हों कहो जे भी रख लीए, कहो जे भी रंग लीए, किवें भी बन लीए, किवें भी संवार लीए, पर यह कदे साडा साथ नहीं छड्डदे। भाव वाहिगुरु जी साडा संग नहीं छड्डदे। ये ख्याल रखना। इसलिए जैसे बने हो वैसे बने रहना, यही सब तो उत्तम उपदेश है।
اگے آپ رضا دے مالک ہو ایک گل انت پھر بینتی کریں گے کہ واحگرو جی ضرور بولنا یہ ستگرو جی کا ادیش ہے ستگرو جی کی آگیا ہے میری بینتی ہے واحگرو نام ضرور جپنا جی بھگتن کہ کال سدا آنند بھگتی کرنے والے نام سمرن کرنے والے من سدا ہی آنند رہتا ہے گرو ارجن صاحب فرما ادروائز من ٹھیک رہتا ہے کروز دھد جلن لوگ موہ اور نہ مکر والی وستو لوگ تو مکتا ہی نہیں پتا نہیں انہوں کتنا پیسہ چاہیے پتا نہیں انہوں کی زمین چاہیے پتا نہیں انہوں کوسر چاہیے پتا نہیں انہوں کوجن چاہیے کوئی پتا نہیں کس سچ یہ کچھ بھی نہیں چاہیے یہ رام نام چاہیے یہ گرو چاہیے یہ واحگرو جی کا نام چاہیے تو پاگاں والے ہاں ستگرو کی شرن میں آئے ہاں ذرا تھوڑے جے اچے ہو کے وڈے بالک بن کے ستگرو کی گود میں بیٹھن کا یتن کرے ہو جائے ستگرو پرسن نے اور مہربان نے سکھ ندان پریتم پر میرے اگنت گن ٹھاکر پر تیرے موہے انار تمری سرنائی کر کرپا ہر چرن سے آئی دیا کرو بسو من آئے موہے نرگن لیجے لڑ لائے رہاؤ رب چاوے تا کیسی پیڑ ہر سیوک نہیں جم پیڑ سر دوکھ ہر سنگت نسے جان کے سنگ سدا پرب بسے پرب کا نام من تن آدھار وسرت نام ہووت تن چار پرچت آئے پورن سب کاج ہر وسرت سب کا محتاج چرن کمل سنگ لاگی پری وسر گئی سب درمت من تن انتر ہر ہر من نانک بھگتن کے کر سدا آنند سیوا پروان کرو جی میرے نال ہوں ست نام واحگرو کہو تا جو میرے گردیو گرو ارجن صاحب مہاراج پرسن ہو جان گرو پرساد وترن ہو گئے

कर्म होवे ता परम पद पाई है, कथे अकस कहानी। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी, साई सच समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी। जा तुद पावे ता गुरमुख बूजे, होर मनमुख फिरे आनी। चारे वेद ब्रह्मे को दिए, पढ़ पढ़ करे विचारी। ताका हुक्म ना।

कर आस्वीकारी। तू सच्चा तेरा किया सब साचा, देता साच वखानी। जा को सच बुझावे अपना, सहजे नाम समाणी। आसा मेरा तीजा सतगुर हमरा परम गवाया, हर नाम निरंजन मन वसाया। शब्द कीन सदा सुख पाया, सुन मन मेरे तत् ज्ञान। देवन वाला शब्द जाने, गुरमुख पाइए नाम निदान। राव सतगुर पेके की वडियाई, जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई। सहजे माता हर गुण गाई, विन गुरु पूरे कोई न जानी। माया मोहे दूजे लोबाणी, गुरमुख नाम मिले हर बाणी। गुर सेवा तपा सिर तप सार, हर जियो मन वसे सब दुख विसारण हार। दर साचे दिस सच्चार, गुर सेवा ते त्रिभवन सो जी होए। आप पछाण हर पावे सोए, साची बाणी महल प्राप्त होए। गुर सेवा ते सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे। साची शोभा साच द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए। अंदिन भगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए। नानक साच कह विचार, हर का नाम रखो

आवै सोई। सतगुर नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई, नामे तृष्णा अग्न बुझे है नाम मिले तिसे रजाई। रहाओ कल कीरत शब्द पछान, एहा भगत चुके अभिमान, सतगुर सेवे होवे प्रमान, जिन आशा कीती तिसनो जान। तिस क्या दीजे जे शब्द सुनाए, कर कृपा नाम मन वसाए, एहो सिर दीजे आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए। आप करे तै आप कराए, आप ते गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलाणी, बिन नावे सब फिरे बोराणी। तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। अमृत मीठा शब्द विचार, आन दिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार। हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरु।

सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिंगार सदा रावे फिर अपना।

ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर कह पै पाए जोरते सिफ्ती सच समाओ। पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल।

सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिधार कर ही सो फिर पाया सच्चे शब्द विचार अवगण गुणी बखसाया हर चो लिव लाई हर वर पा।

जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए अंगदिन सेवै सहज सो सच्चे माही समाए दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए फिर ना जानन आपना सुनि

सुहागनी सदा फिर पाया हूं मैं आप दुआए, फिर से ती अन दिन गह रही सच्ची सेज सुपाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ ना पाए, मैल नाही दुहागनी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिव लाए।

मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिर का स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरुमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व

आप गवाए। तन मन शीतल मुख उजले फिर कह पाए प्यार से सुखाली फिर रवे हों मैं तृष्णा मार कर कृपा कर आया गुर कहे अपार वर पाया सुहागनी केवल एक मुरार सबे गुण है बखाए लयोन मेले मेलन हार नानक आखन आखिए जे सुन तरे प्यार आसा मैला तीजा सतगुर ते गुण उपजे जा प्रभ मेले सोए सहजे नाम ते आई है ज्ञान प्रगट होए ए मन मत जाने हर दूर है सदा वेखा दूर सद सुनदा सद वेखदा सबद रहा भरपूर रहाओ गुरमुख आप पछाणिया।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी तुरु आप खुआयन जुए बाजी हारी बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाई है।

पमेला तीजा अनरस में पोलाया बिन ना में दुख पाए सतगुरु पुरख ना फेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाए अनरस लागा

आए एहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार अंगिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार सुहागणी महल पाया विचों आप गवाए गुर सब्दी सिगारिया अपने सहलिया मिलाए मरना मनो विसारिया माया मोह गुबार मन मुख मर मर जमे पी मरे जम दर होए कुआर आप मिलाए से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम समाने मुख उजले किस सच्चे दरबार हासा महला पंजवा अष्टपदिया कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद पंच मनाए पंच रुसाए पंच वसाए पंच गवाए इन विद नगर

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहा दर्शन की प्यास तनी चितवत अनेक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलियो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो न मैं रंग जेते माया रंग रस बिन जाए किन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए सब जग चल तो पेखी है नहीं चल हर को ना

कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पेटे परमानंद। आसा महला पंजवां बिरहड़े कर चौथा चंता की जत

अंचल दया साधता नानक पै सागर पार पराए। जन्म मरण दुख कटिए प्यारे जब पेटे हर राय। सुंदर सुगर जान प्रभ मेरा।

जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुखते कहन न जाए। साची प्रीत ना सुटई प्यारे जुग जुग रही समाए। जो तुद पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सह सुवाए।

जित जपिए हर नाव साई कार कमावनी प्यारे तुर मस्तक लेख लिखाए एको आप वर्तदा प्यारे कट

सत्य सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया, मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पड़या, रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई, एना अखरा में जो गुरमुख बूझे, इस सिर लेख ना होई, उड़े उपमाता की जय, जाका अंत न पाया।

बंध लया। खखे कुंदकार सह आलम कर खरीद जिन खर्च दिया। बंधन जा कै सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुक्म पया।

काल सेवक जे काल है, शब्द गुरु कै लाग रहे, बुरा पला जे समकर जाने, इन विद साहिब रमत रहे।

छछे छायावर्ती सब अंतर तेरा किया परम होआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया जज्जे जान मंगत जन जाचे।

एको रव रहा सब थाई एक वस्या मन माही तटे टंच करो क्या प्राणी कड़ी के मोत के उठ चलना जुए जन्म ना हारो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछ होआ सो सब चलना तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहे।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल होआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम बूढ़ तार लेहे तारण राया। थत्थे थान थन अंतर सोई, जाका किया सब होआ, क्या परम क्या माया कही है, ज्योत पावे सोई पला। दद्दे दोष ना देव किसे दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया,

गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत पज पाया। बब्बे बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा। जी जंत संसारी कीते पासा टालन आप लगा। पब्बे पाले से फल पावे गुर प्रसादी जिनको पाव पया। मन मुख फिरे नाचे तै मूड़े लख चौरासी फेर पया। मम्मे मो मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या। काया पीतर अवरो पड़या मम्मा अखर विसरिया। यही जन्म न होवी कदी जेकर सच पछाणे। गुरमुख आखे गुरमुख बूझे गुरमुख एको जाने। रारे रव रहा सब अंतर जेते किए जनता जंत उपाय।

अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करें क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दाता।

गल चाटड़िया सत्ते संजम गयो मूड़े एक दान तुद खुताए लिया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एक तान खा दे तेरा जन्म गया मम्मे मत हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रोग पया अंतर आत्मे ब्रह्म न कीनिया माया का मोहताज भया कके काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे

था। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निबुरे का है नाव बुरा। तद्दे तावत वर्ज रख मूड़े, अंतर तेरे निधान पया। गुरमुख होवे ता हर रस पीवे, जुगा जुगंतर खाए पया। गगे गोविंद चित कर मूड़े,

ला राम तन फिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन फिर मेला होए स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग फिर कै सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज तलोनड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुखवर।

नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पी जाए। सखियो सहेलड़ी हो मेरा पिरवन जारा राम, हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम। मोल अमोलो सच कर टोलो प्रभ पावे तामुंद पली, एक संग हर कह करें रलिया हो पुकारी दरखली। करण कारण समरथ श्रीधर आप कारज सारे, नानक नजरी तन सुहागण शब्द अब सदा रे। हम कर साचा सोए लड़ा प्रभ आयणे मीता राम, रावे रंग रातणिया मन लीड़ा दीता राम। अपना मन दिया हर वर लिया ज्यो पावे त्यों रावे, तन मन फिर आ गए शब्द सभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ न पाए बहुत

तेरा मन दाता लाल प्यारे राम। अन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल कर पाया, आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया।

तित अगम पूरे कहो कित विद जाइए राम। सच संज मो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम। सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निधाना। तित साखा मूल पत नहीं डाली फिर सबना प्रधाना। जप तप कर कर संयम साकी हठ निग्रह नहीं पाइए। नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम। कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए पंच मिले विचारे। काम क्रोध कपट बिख्या तज सच नाम उधारे। हौ मैं लोभ लहर लब थाके पाए दीन दयाला। नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला। हौ बन बनो देख रही त्रिन देख सवाया राम। त्रिभुवनों तुझे किया सब जगत सवाया।

के तुध बिन किस्सा लाही। अनमंगिया दान दीजे दाते तेरी भगत परे पंडारा, राम नाम बिन मुक्त ना होई।

la mitaka. Out of the ara. Ik khayal kare ho. Main zara mudle roop vich ek shabd de aramb de ek lafz nal kuch judna jodna chahta. Tere ghar vich bahut kuch hai. Char padarth hai. Karma arth kaam mokh charu padarth hai. नव निधियां ने 18 सिद्धियां ने उन्हें मिल जांदियां ने रुकने मैं तो आज किसी कई बार अखिल अर्थां विच मनुख असल भाव नु छड़ जाते नव निधियां ने 18 सिद्धियां ने उसनूं मिल जांदियां ने जिन्हों तू दे ते तू देंदा उसनूं है नाम जिन के मन वस्या एक होर थां में सतगुरु ने आख्या ब्रह्म बिंदे जिसका ब्रह्म मत रहे एक शब्द लिव लाए इतने भी नाम जन के मन वस्या वाजे शब्द कनेरे मिल दिया ने दरवाजा उनके लिए खुल जा उतने भी ये ब्रह्म बिंदे जिसका ब्रह्म मत रहे एक शब्द लिव लाए नव निधि 18 सिद्धि पीछे लगियों फिरे जो हर हिरदे सदा वसाए हरि नु हिरदे विच वसाए नव निधियां 18 सिद्धियां हुंदे पिछे लगियां फिरदियां नव निध रिद सिद्ध दीनी करते टोट न आवे काहिदा रब पर तरह सोचने एक पासे बाणी गुरु ही ये गल आख रही भुगत ज्ञान दया पंडारन घट घट वाजे नाथ आप नाथ नाथी सब जानती अगली जानती आप नाथ नाथी सब जानती रिद्ध सिद्ध अवरा साथ ओ रब दे राह विच ठिकाने नहीं रिद्ध सिद्ध अवरा साथ ताकि जिहड़ा नाम नाल जुड़दा उन्हूं अवरा साध मिलदे ने ये रिद्ध सिद्ध अवरा साध ने ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਿਣ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਮਿਲਣ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਆਣਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਤੈਂ ਚਾਖੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਵਿਸਮਾਗ ਆਣਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਣਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਤੇ ਜੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦੀਨੀ ਕਰਤੇ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਦਿੰਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਸ ਗੱਲ ਰੁਕ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵੇਂ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਬਹਾਉ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਹੋ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸੌਰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਵਸਨ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ ਹਰਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਾਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
मसला प्राप्ति है ना, एथ इन दाई पहला सब्जेक्ट समझ। क्योंकि रब न मिलने वाले कोई आस नहीं होंगी, रब विच ते जीव विच एक अंतर है। जीव आसां दे संसार विच आया, इत्थे लिव छुटकी लगी तृष्णा, जैसी अग्नोदर में तैसी बाहर माया, आसा दे संसार विच आया। निरंकार जिहड़ा है ओ निराशा दे संसार विच रहिंदा, आ इक अंतर, क्योंकि उत्थे कुछ है ही नहीं। ख्याल करो, जिस बच्चे ने कार देखी नहीं वो कार क्यों मंगेगा? जिस मनुख ने जीवन में हवाई जहाज देखा ही नहीं वो क्यों आखेगा मैंने हवाई जहाज दिखाओ जा चढ़ाओ? जिन्हें देखना है उसे आशा पैदा होगी। हम निरंकार जो है वो है सुन समाध गुफा तय आसन। उस दिन भी रफज आसन के सुन समाध अर्थ है जिसे कुछ नहीं, जब कुछ ना सी हो तब क्या होता, जो कुछ भी नहीं थी उदो की थी किनू कोई देखता थी। अरब नरब चबलू कारा धर न गगन न जोत अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, कुछ भी नहीं, नदी ना नीर वहाएंदा, कुछ भी नहीं। उथे थी सुन समाध लगाएंगा। भगत का जदों जीव भगती के राह से तुरद, जदों भगती की मंजिल से पुजता है, उत्थे जाके उस सुन समाध विच जिहड़ा प्रभु बैठा है उत्थे केवल ओ ते ओ दोनों ही होंदे। ऐसा मेरा निश्चय गुरु सदभाई है। गुरु कहते सुन समाध गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन, उत्थे केवल रब रहिंदा। ते दूजा उत्थे पहुंचदा है सुन समाध वाला, वह है भगत संग प्रभु गोष्ठ कर। उत्थे रब ते भगत गल्लां करदे, उत्थे आपस विच जुड़ बैठदे सुन समाध गुफा विच, जिथे कुछ भी नहीं। सुन दा अर्थ है जीरो, उत्थे कुछ भी नहीं। सुन समाध गुफा तें आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तें बासन, भगत संग प्रभ गोसित करत, तें हरख ना सोग ना जन्म ना मरण। जिथे कुछ है ही नहीं उत्थे किसी ने मंगना की है? जिथे कुछ है ही नहीं उसे किसी को प्राप्ति की आशा अर्ज करते हैं। अज के युग में क्यों लालसा बढ़ रही है? क्योंकि देखने को आए दिन नवी चीज आ रही है संसार में। अज तो 100 साल पिछे चली जाइए इन आशा नहीं सन, इन लालसा नहीं सन, क्योंकि जिन्हें चीजा सन उन्होंने प्राप्ति। ऐसे बजुर्ग ने जिन्होंने अपना सारा जीवन पिंड बिता दिता, उन्होंने ट्रेन भी नहीं देखी, उन्होंने पता ही स्टेशन, उन्होंने केवल खेत विच केवल जमीन विच फसल उगती वेखी। इसलिए उन्होंने जीवन का केंद्र केवल करदाने आ जाने चाहिए सन, इतों तक ही होंगे, क्योंकि जड़ी चीज देखनी है उसे भी लालसा पैदा होगी। लालसा कोई लालसा कोई नहीं, क्योंकि सुन समाध गुफा तय आसन। मनुख जीव जरा एक ऐसे संसार में आ गया जिन दे चार चफेरे पदार्थ खिल रहे हुए ने और दिन ब दिन बढ़ रहे, कष्ट नहीं कर रहे, हर एक चीज बहुतात विच हो रही, नवी किस्म नवी क्वालिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। अज तो 50-60-100 वरा पहले चले जाओ, केवल खद्दर के सूट, घर का बुनिया होया खद्दर, अज एक दुकान से जाओ इन्नी वरायटी, इन्नी वरायटी कि मनुख सोची पै जाता की खरीदा तो की छा। उदों एक या वद तो वद दो सूट होंगे सन, एक धो लो एक पा लो। अज घर इन्ने सूट होंगे ने कि हो सकता जीवन में कई बार एक बार पहनिया हुआ सूट दोबारा पहनने का चांस भी ना मिले, कहीं ऐसा ऐसा भी पहने भी ज्यादा होंगे। ख्याल करो यह सब कुछ क्यों है? क्योंकि आए दिन वरायटी बढ़ रही है, जड़ी चीज बदनी है, जड़ी चीज सामने आनी है उनकी लालसा पैदा होनी है। यह कारण है जीव क्योंकि पदार्थों की दुनिया में आया, जीव का निरंकार का अंतर की दूरी की है। जीव आ गया संसार अंदर जरा पदार्थों का संसार है, जिथे दिन ब दिन पदार्थ बढ़ रहे, रब तो विछड़ के एक सुन समाज तो विछड़ के इतने आ गए। उनके अंदर यो कारण दिन ब दिन लालसा बढ़ रही है, दिन छुटकी लगी तृष्णा बढ़ रही है। हम रब तक कि पहुंचे नाम नी जुड़े लालसा ही नहीं जाने। हम गल यह नहीं कि यह चीजा नाल गुरु नानक जोड़ना चाहता है, एक ख्याल करे
ऐसे तारों के असर में हैरान हो गया। इतना लालच है, इतना लालच है, किसी ने किया कि ये तू नाम जब तक हुआ मिलेगा आ मिलेगा, लालच हो गया। अरे ख्याल करियो तो जीव लालसा की दुनिया में आए, परमात्मा के हूं समाज गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय आसन। हूं भगत ने जे उनके नाल गोष्ठ करनी है उस आसन से पहुंचना है, भगत संग प्रभ गोष्ठ कर जिथे ब्रह्म बच्चे तो उन्होंने भी आस्था मनसा त्यागनी पाएगी, क्योंकि समाज संसार इस पदार्थों की दुनिया मनसा वध रही, क्योंकि पदार्थों की बहुत और दिन ब दिन वध रहे हैं, ज्यों ज्यों वध रहे हैं त्यों त्यों आस्था मनसा वध रही। तो गुरु ने ब्रह्म नूं पाण लई जिथे ब्रह्म वसदा है समाज में उत्थे जाण लई इहो शर्त ला दित्ती, कहन लगे

केवल ब्रह्मपुर बस एक मसला खड़ा हो गया। इतने तो आसा मैंने सा खत्म कर दिया, आसा मैंने सा खत्म कर दिया। कोई चाहत ना रहे, आसा मनसा चाहता खत्म करके ता ही तो वह केवल ब्रह्म पूर्ण तासन के उस स्थान से पुजने ता गोष्ट होनी, मगर संत प्रभु गोष्ट कर अरे ख्याल करियो। इतने आख रहे ने कि हे मनुख तेन जो चीज लोड़ है सब कुछ इतों मिलती है, इतने नंबदियां ने भी हेठा रसदियां ने उधर आखिर रिद से दौरा साहब पर गुरु के डर कहना है इसमें कि गुरु की फिलॉसफी बिल्कुल वक्त जोड़न नहीं भी एक फिलॉसफी। गुरु कहता है जिस बच्चे नू जिस चीज की मांग हो वे, लालसा हो वे, लालसा हो वे, ते उन्दे नालों चंगी ते खूबसूरत चीज उन्हें देना चाहिए जिन्नी देर उन्हें पता ना लगे आ चीज कट गया ते आ चीज वधी है और दो चीजों का ध्यान से खाना पड़ेगा ना। नहीं तो जड़ी तो उन्होंने मन चुस्वार बच्चे का स्वभाव है, जड़ी चीज उन्हें देखी है वही मंगनी में हजरत की थी, जड़ी देख रहा मंगता है क्योंकि संसार के पदार्थ देख रहे हैं, संसार का सुख वो देख रहे हैं उनकी लालसा रखता है, पदार्थों का रस वो देख रहे हैं उनकी लालसा रखता है। हूँ उनकी पदार्थों की लालसा तो अगे का जो कोई रस है वो उन्होंने एक बार चखाया जाए दिखाया जाए कि देख आ रस तेन इतने मिलेगा पर देख एंगे तू चंगा रस भी है या तू चक के देखो तेन नाल ही मिल जाए नाल मिल जाए तेरे आखिया मिलेगा ही नहीं तू उन्हें नहीं आएगा जी। संसार की एक भावना जी कोई भी काम संसारक मनुख कर भावे भगती का काम भी करे क्योंकि आसा भी संसार में आया ना ये निराशा बिल्कुल नहीं करता कोई काम नहीं। दुकानदार जी दुकान से जाके टाइम दिन बैठ गए तो एक लालच एक लोभ एक आशा है कि इतों कुछ कमाई कराऊंगा सुख भोग जीव भी आशा भी दुनिया में रहायश है। यही कारण इनका तो जन्म भी किसी आस्था में हुआ है, जे मां ने भी बच्चे ने जन्म दिता है तो किसी आस्था में गुरु ने बाणी चक कह लगे ज्यो जननी गर्भ पालती सुत की कर आस्था वड्डा होए धन खाट दे कर जीव जो कुछ कर रहे हैं उनके पिछे की आस्था खड़ी है, भावें कोई बिजनेस कर रहे हैं भावें कोई किसानी कर रहे हैं भावें कोई व्यापारक दुनिया अंदर देशों प्रदेशों में घूम रहा है भावें कोई मुलाजमत कर रहे हैं तो अपनी ड्यूटी बजाने लिए अंधेर सवेर पुजता है। जिन्नी इसकी कारण है जिन्नी मशक्कत है ना वो किसी आस्था पर अदा है आस्था पर अदा इन पता हो ना मैं दस वाले दुकान करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता करी इन पता हो ना फलाने की नौकरी करके सारा महीना टाइम गुजारागा मैनू ने तनखाह देनी नहीं कदे इसने किसी दिती नहीं तो कभी ना जाए। किसान पता हो ना जिस धरती में बीज पा रहे हैं कलर की धरती है उसे बिल्कुल नहीं पैदा होना कदे ना पाए प्राप्ति की आस जी है ना उनके आधार से जीवन का हर काम कर रहे हैं बिना आस तो कुछ भी ना करे हर एक चीज का फल चल ईवन जो गुरुद्वारे आता है ना जो भगती भी करता है तो उनके पिछले भी एक आस है सुभा है ऐसी दुनिया में ऐसे पदार्थ के संसार में आया है इतने दिसदा इनू बहुत कुछ है इसलिए लालसा बहुत है आस बहुत है ये बिना आस से कुछ करता ही नहीं बिना आस से कुछ नहीं करता। गुरुद्वारे आता तां आस लैके गुरुद्वारे जाऊंगा धर्म कर्म करांगा गुरु प्रसन्न होगा रब प्रसन्न होगा फिर सुख मिलेगा बल्कि कई बार तो ये तो भी गलत हो जाता है मनुख गुरु को रब को भी सुख सस्ते लैन लिए आते एक बार अर्ज की इनू पता है भी वकील ने 50,000 रुपया मंगना है मुकदमे में फिर पता नहीं सफलता मिलनी कि नहीं मिलनी इनू पता लग गया भी गुरुद्वारे अरदास कराइए गुरु हर काम सुवरदा इतने पंजा सौर जाना इनके मन में यह गल ऐसी नहीं कि इनू विश्वास ही होजा जा सौ सौरना तो है भावना ना पर अपने इरादे अंदर एक सब कुछ ले बैठा एक व्यापार के रूप में उसे डॉक्टर को इलाज कराऊंगा पता नहीं कि इतने भी सुने दुख खत्म हो जाते चलो अरदास करो
क्षति हो जाएगी, क्योंकि मनुख हर काम सस्ता से सौखा करना चाहता है, लेकिन लालसा आया किसी आत्मा, क्योंकि आत्मा वे संसार में बैठा है लोड़ा बिना सुरदई। हालांकि गुरु अपनी रचना तो आख रहे हैं आत्मा मनुखा सागल से आगे, जिथे भगती की मंजिल से गुरु पहुंचाना चाहता है उत्थे मकसद यो ही है कि कहूं फल की इच्छा नहीं बचे केवल भगती उसे कोई लक्ष्य नहीं, पर पदार्थों के संसार आस्था बिना तुरदा ही नहीं। हूं गुरु आखते ने भलिया मैनू पता तू एवं तुर जिन्ना देर तुरेगा नहीं आएगा नहीं, मैं तेन अगला रास्ता भी कैसे दिखा सकता। कहने लगे चलो ठीक है, कहते गुरु ने खूबसूरत कहंग है, कहते नहीं भलिया जिन्या की हो तू मंगना सारनी देगा गुरु निरंकार देगा सब कुछ उसके घर में, पर तू एक बार शब्द नाल ते नाम नाल जुड़ के वेख सारा कुछ मिलेगा। मकसद यह है भी एक बार यह जो नाम नाल ते शब्द नाल जुड़ेगा जो इन यह रस आ जाएगा वह रस आप चले जाएगा, यह रस आवा तो वह रस नहीं पावा। संसार जिन्हों अजे वह रस नहीं आया उन्होंने आखिए तू आ कम छड़ दे बड़ा क्यों छेगा, आ त्याग दे त्याग दे ये रस झूठे ने क्यों छेगा, वो तो आखेगा यह जग मिठा अगला कि मिठा नहीं। गुरु कहते भैया मैं तेन एक रस होर देना चाहना तो इसे लालसा भी नहीं देना चाहना, चलो इसलिए गुरु ने अपनी बाणी घट दिता। कह लगे रब न तू किसी अपने लोभ नाल ही मित्र बना के देख लै, अपने लोभ नाल ही बना के देख। गुरु कहते अपने लोभ को कीनो मीत सगल पदार्थ मुक्त तक दी, मित्र बार एक बार इस रस में चट के सही लो आ भेख है इस शब्द के आरंभ का, मेरा यह बेस नहीं कि सच्चे साहब क्या ना तेरे घर में सब जो कोई मंगे दे जाने तो लोग इस लिए आई जाए, फिर वो ठिकाना कितने जाएगा आसा मन सगल से आगे जागते रहेगा। ब्रह्म निवासा का जोड़ा ठिकाणा है वह मंजिल जी जरा आसन है वह कितने जाएगा, वो तो मनुख नसीब नहीं हो सके। गुरु आखते ने मैं तेन तेरा सुभाव देख लिया है, तू पदार्थों की दुनिया में रह रहे के लालसा आसा बधा चुका है, इसलिए मैं तेन आखना यह लालसा आसा भी पूर्ण होनगी इसे दर तो पूर्ण होनगी। इनके घर में की नहीं तू नाम के शब्द नाल जुड़ के वे, सोचते जो ये नाम के शब्द नाल जुड़ेगा ना लालसा ही जुड़ेगा चलो, पर जो वो रास्ते आ जाएगा ना फरीद वांगू शक्कर लई चलो इबादत करे निवास पढ़े, जो वो रास्ता आ जाएगा उदो आप आखेगा शक्कर खाने निवास गुरमाखियों रब ने पूजन कर। गुरु इसलिए उस बेस नू वरत रहे ने आखते।

अंदर कोई शांत दा अडोलता दा रज दा सुख आ गया। क्योंकि इच्छा पूरी उदो समझो जदों इच्छा करने वाला मन शांत हो जाए। कि पदार्थों विच कभी इच्छा करने वाला मन शांत होया, इनका फैसला गुरु ने बाणी विच है। गुरु कहते ने बिख्या मैं कि नहीं तृप्त ना पाई रजिया। जे कोई आखे गुरु ने बाणी विच कोट जो हो रहे लाख करोड़े मन ना हो रहे परे परे ही को लूदी है। कोई ठिकाना कोई ऐसी सीमा है जिथे जाके मनुख आखे मैनू हुण पदार्थां दी लोड़ नहीं। गुरु ने आख्या बिख्या मैं कि नहीं तृप्त ना पाई। एक एग्जाम्पल देंदे ने कहिंदे ने ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे जिवें अग जिहड़ी बालन तों नहीं रज्जदी। जे कोई आखे भी अग बालन तों रज जाएगी दस मन बालन दी थां वीह मन पा दें बुझ आखिर अग आखेगी होर ना सुट मैं रज गई। कहिंदे ने नहीं जिन्ना बालन पाएगा अग होर भड़केगी जिन्ना बालन पाएगा अग होर भड़केगी। अग ने कभी बालन तों रजना नहीं। गुरु कहते ने बिख्या मैं किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रापे बिन हार कहा अघाई। रब तो बिना रज किथे अघा जाना शांत हो जाना रज जाना। गुरु कहते ने मैं महसूस किया जेड़ा शांत अंदरली शांति का सुख से वह मैनू हुण मिले। सतगुरु कहते

संसार में पढ़े लोग को सत्संगियों गुरुमुखो आओ इको तरीका है। शब्द गुरु नाल प्यार पैदा करो, शब्द गुरु दे नाल प्यार पैदा करो, सांझ पैदा करो ते नाम नू आधार बना लो।

पिछड़ टंक चढ़ाया। मेरे मन हर हर ध्याए सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा, गुरपूरै मीठा लाया। रहाउ आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया,

जन नानक बजह बजाया, आपे ताण दीवान है प्यारा, आपे कार लाया, ज्यों आप चलाए त्यों चली है प्यारे, ज्यों हर प्रभ मेरे पाया, आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक बजह बजाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जप जी साहिब एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक हो सी पी सच। सोचै सोच न हो गई जे सोचे लख वार, चुपै चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुनिया पार, सहस सियाणपा लख हो है ता इक न चलै नाल। किब सजारा होई है किब कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै बड़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, इक न हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझै ता हमें कहे न कोई। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण बढ़ियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तन के, गावे को जी लै कर दे। गावे को जप दिस दूर, गावे को विख हद रह दूर। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहि, जुगां जुगंतर खाहि काह। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच नाई, पाख्या पाओ अपार। आखे मंगहे देहि दात करे दातार। फेर के अगै रखिया जत दिसै दरबार, मुहों के बोलन बोली है जत सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाऊ बढ़ियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक ए वै जानी है सबा पे सच्यार, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निदान। गावी है सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस पावा, बिन भाणे के नाए करी। जे ती सिर ठो पाई वेखा, बिन करमा के मिले लई। मात विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुणी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे हर जा, होरद सुणी होए। नवा खंडा विच जाणी है, नाल चल है सब कोई। चंगा ना उरखाए कै जस कीरत जगले, जे तैस नदर न आवई ता बात न पूछे के। कीटांदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण वे। तिया कोई न सुजई जे तैस गुण कोई करे। सुनया सद पीर सुरनाथ, सुनया धरत धवल आकाश। सुनया दीप लो पाताल, सुनया पोह न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख भाव का नाश। सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनया मुख साला हनुमंद।
ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਤੋ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾਂ ਕੇ ਗਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਸਗਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਈ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਵਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਝੂਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸਿੱਧੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ

मन्ने नानक भवहि न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे निर्गमान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कह करना नाही सुमार। तौल धर्म दया का भूत संतोख सा प्रख्या जन सूत। जे को बुझै हुए सचियार तबले उपर केता पार। धरती होर परे होर होर तिसते पार तलै कवण जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखा बुढ़ी कलाम। यह लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखा केता होए। केता दान सवाल रूप केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाऊ एक गवाऊ तिसते होए लख दरियाऊ।

गावे खाणी चारे, गावे खंड मंडल बर पंडा, कर कर रखे थारे। सही तुदन गावे जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर किते गावन मुसे मैं जतन आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै किता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावे सोई कर सी हुकम न करना जाई, सो पातशाह श्याम पात साहेब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शर्म बद जोड़ी, ध्यान की करें विभूत, किंथा काल गुआरी गाया जोगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको एस। भुगत गया दया भंडार नु कटकट वजह नाद, आप नाथ नाथी सब जानकीर दिसद अवरासाद। संजोग वियोग दे कार चलावे लेखे आवे भाग, आदेश तस आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको एस। एक काम आई जुगत ब्याई तिन चिले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान। जेव तिस पावै तिव चलावै, जे होवै फरमान, ओ वेखै उन्हां नजर न आवै बहुता हे बढ़ाण। आदेश तिस आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको एस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान। जब तस पावै तिव चलावै, जब होवै फरमान, ओ वेखै उन्हां नजर न आवै बहुता हे बढ़ाण। आदेश तस आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको एस। एक दूजी पौ लख होवै लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश। ए तरह पत पौड़ियां चढ़िया हुई अकीस, सुन गल्लां आकाश की गीटाया रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर च पैन है जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राजमाल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जोगती छुटै संसार। ये साथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम निजन कोए। रति रुति सिद्धि वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती साप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान। नदरी करम भवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जप जाए। धर्म खंड गायो धर्म, ज्ञान खंड गाखो कर्म, केते पवन पाणी वसंतर केते कान महेश। केते बरमे काड़त कड़ी है रूप रंग के वेश, केतियां करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश। केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश, केते सदबुद नाथ केते केते देवी वेश। केते देवदान मन केते केते रदन संबंध, केतियां खाणी केतियां वाणी केते पाद नरेंद। केतियां सरदी सेव केते नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विरोध गोड़ आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै काटत करिए बहुत अनूप। तां कियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछ पछताए। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुध, तिथै घड़िए सुरस दां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जुद महाबल सूर। तिन महराम रहिया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप न कथने जाहे, ना ओ मरहे न ठग जाए। जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै कह लो। करहे आनंद सचा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नजर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पांड, जे को कथै तंत न अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिव तिवकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा तीर सुनियार, अहरण मतभेद हथियार। पाओ खलागन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तत डाल। घड़ी आए शब्द सजी टकसाल,
जिनको नजर कर्म तनकार, नानक नजरी नजर निहाल सलोक। पवन गुरु पाणी पिता माता दर्त महात दिवस रात जाई दया खिल सगल जागत, चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी

प्रधान है के सर्वत्र जापे आएंगे, सर्वत्र थापे आएंगे, सर्वत्र बानाएंगे, सर्वत्र मानाए के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग के सर्वंग कलीम है, के ब्रह्मंग फेम है, कि आकल राम है, कि साहब कलाम है, कि उस नजूं तमाम रुजू है, हमेश्वर सलाम है, श्री गुरमदाम है, गरीब सकता है, गरीब बरसता है, बलंदल मकान है, जमीन वाले जमाना है, तमीजल तमाम है, रुजुअल निधान है, हरी फल जी मेरे आग जकीना ने कल तरंग है, पेद है, पांग है, अजीजल निवाज है, गनीमल खराज है, निरोक्त स्वरूप है, त्रिमोक्त भूत है, प्रभोक्त प्रवाह है, सजोत सुधा है, सदैव स्वरूप है, बेदी अनूप है, समर्थ सुभराज है, सदा सर्वसाज है,

निरोक्त प्रवाह सदैव सदा है विभक्त स्वरूप प्रजोत अनूप है निरोक्त सदा है विभक्त प्रवाह है अनोक्त स्वरूप प्रजोत अनूप है चाचरी छंद भंग है नंग है बेखा लेख है परम है कर्म है नाद जगाद अजय है बेह भूत है दूत है ना सदा सदंद बंद है अभगत है विरगत है नाश है प्रकाश है नचंत है सुनंत है लेख है देख है लेख है पीख है टाय गाय समय गम है नीला नाद है नित सत जात जा दें

एकजाग गणि में हरियंग करियंग करीमल रही में चतर जकर वारदी चतर जकर बहुते स्वयं पव शुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग बहुते चतर जकर वारदी चतर जकर बहुते स्वयं पव शुभंग।

कवास करे पूर्ण हमारी आशा दुर्वजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न ध्याऊ जो वर जाऊं तो दे पाऊ सेवक सेख हमारे तारी है जन जन सत्र हमारे मारी है आप हास है मुझे भरे है मरण काल का त्रास ने भरे है वो जो सदा हमारे पछा श्री हस्तोज करे और अच्छा राख ले रखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दृष्ण के हंता तमोह पुरी जंता काल पाए ब्रह्मा बबधरा काल पाए सब जीव बबधरा काल पाए कर विषण पर गाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब की यो वेदराज ब्रह्मा जू थी यो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जसने उपजायो आदि अंत एक अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को बल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की बीर पछानत चीटी दे गुण चर सूला सब पर कृपा दृढ़ कर भूला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की बीर बिछाने कटकट के पट पट की जाने जाओ करख करा कर तारा पर जब धरतव दे अपारा जब यह करख करत हो कब हूं तब मैं मिलत दे धर सब हूं जेते बदन श्रेठ सब धारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरे निरालम जान तो भेद भेद यारे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब वाद नील नाद स्तंभ जाका मूढ़ चारत पेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ का भेद न जानत महादेव का कर सदा सेवो निरंकार का चिंत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती मरनत पेन पेन दो देती तुमरा लखा न जाए पसारा के बेद सजा प्रथम संसारा एका रूप अनुप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज सिद्ध गिनी उत्पुर खान बहुर रज दिनी कहूं भूल राजा पर बैठा कहूं समट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग करो दोष जिते उठव तुत पाता सकल मुलेश करो रण काता जे आस्तोज तब सरणी परे दिन के दोष दुर्दा मरे पुरख जवन भग परे तिहारे दिन के तम संकट सब तारे जो कल को एक बार दे आए हैं ताके काल निट नहीं आए

दुई कुदरत साजिए करे असन डिठो चाहो दाता करताया तू तुस देवे करे बसाओ तू जनो ही सब से दिल से जिंद कमाओ करे असन डिठो चाहो।

0: पौड़ी बिन सतगुरु के न
1: पाया, बिन सतगुरु के न पाया। सतगुरु भी चाप रखी कर प्रगटा सुनाया, सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन बिचो मुँह चुकाया। उत्तु में विचार है जिन सच्चे से चितलाया।

पाक जे मिले तमस संग लाइए कूड़ा लाल छड़िए हो एक मन अलग से आइए फलता बे हो पाए जे बे ही कर कमाइए जे हो वे पूर्व लिखे आता धूर्त ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गुवाई है मत थोड़ी

पौड़ी सतगुरु बेटो बारिया जित मिली एक सुन संभालिया जिन करे उपदेश ज्ञान जिन दिया नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है वो था बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया।

दृढ़ कर माने मने प्रतीक काल न आवे मेरे चीत कॉन्फिडेंट एंड अंडर द डिल्यूजन ऑफ माया द थॉट ऑफ डेथ एंड देयर आफ्टर नेवर एंटर्स हिज माइंड एंड प्रेशियस लाइफ इज वेस्टेड अवे.

अवर से आनप सगली चार पिस्टन की तू सेवा नाग लीव ऑल अदर क्लेवनेस एंड अटैच योरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सच अ पर्सन.

इंद्रलाज के अवद फ्रॉम सुखमनी साहिब जिसमन बसे सुने लाए प्रीत इट इज सेड दैट ही इन हूज हार्ट द सॉन्ग ऑफ पीस ड्वेल्स इन हिम द नॉट रिमेम्बरेंस इज अवेकन्ड द पैंग्स ऑफ डेथ एंड न्यू बर्थ आर डिस्ट्रॉयड His precious human soul obtains salvation. His fame shall be spotless and his speech like nectar. The name of God shall now pervade his soul. Sorrow and sickness, fear and doubt will vanish. His acts shall be pure and men will call him a saint. And his life will be blessed with the highest glory. Nanak says, Because of these virtues, this is called Sukhmani, the hymns of peace.

0: अब जल लंगे आ जाना नहीं।
1: हो कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बारह बार, जो बन फल पाके भुज रहे बहुर न लागेगा। जेड़ा समा सतगुरु महाराज जी की कृपा का सदका मनुख नु प्राप्त होया, ये वेला लंघिया दोबारा कदे हाथ नहीं आए। जेड़े जीव जेड़े प्राणी गुरु चरणा विच हाजरी लवा के दसा नौह की किरत कमाई का कार्ज करद्या होया भी, कीरत करद्या होया भी गुरु चरणा दे नाल जुड़ के बैठते ने, सतगुरु की सिफत सलाह के अंदर जुड़ते ने, ये समा सफला है, लेखे विच है। गुरु की हजूरी अंदर बैठ के खुशियां मान रहे सरबत माई पाई सतसंगी जनों, सब तो पहला साहबा की बख्शी हुई गुरु फतेह के सिमरन नाल हाजरी दवाईए। कोई भी रसना फतेह के सिमरन तो वांझी ना रह जाए। सरबत संगत आदर प्यार ते सत्कार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सीस चुकाओ। दासरां दे जत्थे वल्लों फतेह प्रवान करदे हुए गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। निम्रता विच आया होया प्राणी लाहा लै जांदा है, हंकार विच मत्या होया मनुख अपना जीवन खुआर कर जांदा है। वो पहचानण दा यत्न नहीं करदा, समझण दा यत्न नहीं करदा। इतिहास जो लगातार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन प्रति कुछ विचारां तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं, उसे लड़ी नूं अगेरे तोरन दा यत्न करदे। कल दे दीवान अंदर इत्थों तक बेनती कर चुके हैं, आलम खान 10,000 फौज लैके आया, पहाड़ी राजां नूं दबाउण दे मनसूबे दे नाल इन्हां पहाड़ी रियासतां दे रजवाड़ियां विच आपसी इन्हें 22 फुट कामयाब भी कुछ हद तक हो गया। पर राजे भीम चंद ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में तरला लैके आख्या, दाता तुसी बड़िया रहमतां वाले हो, मेहर